0: ऐसा चुक चोर नर्वी ही मुद्दों तो चुक चाहे आगे कर नर्व तुम ने बैक रख पे के गुंते तो पूर्व सामे ने जे ने सामे तो तो जे जगर जरबो में जे जाना जरबो पार के उठान रजी सर्वे के कवा उन दोला शब्द तोने बात है ना दारों उम्मे तोने सब आगे बताने रंडे जैसे ना बस वाला तेतम दो कन चोरगारी वाला
1: कौन असे बते ने डूंकी नवा पादी ला पापी लंगरो जाची ने दम चे लेची गोपाती रे लेची चोपाते जी मिले ना मन थे सेंचुरी